0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: California.
1: Extreme energy drink.
2: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैनेमा थप्लो त सात मेगाहर्जबाट म बद्री प्रसाद सागकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष सन 2026 जुलाई 28 तारीख श्रावण 12 गते मंगलबार चतुर्दशी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पय भरी।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पिता महादेव, हरि हरि सदैव हरि भक्ति गरौं है, हरि हरि सदैव हरि भक्ति गरौं है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौं है, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती गरौं प्रभु आती मा तुमारे, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारे, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पितै महादेव, हरि हरि सदैव हरि भक्ति गरौं है, हरि हरि हरि हरि सदैव हरि भक्ति गरौं है, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन छोडेर नजाऊ हो रुन्चनी मेरो मन, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन

जपौ हरिलाई कृष्ण जपौ हरिलाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ भरिलाई एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ भरिलाई।